मन वसाए नानक नदर कस पाए। आसंद सतन केवल आओ मैं शब्द जलाए पौड़े भगत।

0: सब जग चलन हा पूर्व ठाकुर मख्य कूट व्यापू नानक बखाने बिनती
1: सच ता प्रजाणी जार सचा होए कूड़ की मल उतरै तन करै छत होए सच ता प्रजाणे जा सतरे प्यार नाऊ सुमरस ता पाए मुग दुआ सच ता प्रजाणे जा जुग जन

ज्ञानी नचे बाजे बावे रूप कर सिगा पूछे कुके बाधा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय कर प्यार।

0: पाए। चौकड़ मुलाया बचौके पाया, सिखा कान चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। चल पिया वे तगा गया मेला पहला,
1: लख चोरियां लख जा रिया

रंग हसै रंग रवा चुप फिकर जाए, परवाह नाहि किसै केरि बास, सचे ना दरबार टूपर खर्च मंगा जब देता घाए।

समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण किया। पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकागर करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। गुरु साहिब जी अज दे पावन शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नू जो समझाउणा चाहुंदे हन बड़े प्यार सत्कार दे नाल समझण दा यत

आप जी रोजाना इस अस्थान तों अमृतमई बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। बेहागड़ा राग दे विच पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन गुरु अर्जन देव महाराज जी सतगुरु जी वल्लों चार पदियां दे रूप विच ये पावन शब्द उचारण किया है, जिस विचों दो पदियां दा पाठ आप जीयां ने सरवन किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 544 दे उपर सुभाईमान है। बेहागड़ा महला पंजवा, घर दूजा, दूसरे घर विच इहदा उचारण है। एक ओंकार एक अकाल पुरख परमेश्वर जो सबना जीयां दा दाता है, विधाता है, गोविंद है, गोपाल है, राम है, रहीम है, वो एक ओंकार परमेश्वर जिदा नाम सच्चा है, सदीवी है, सत नाम गुर प्रसाद। एक परमेश्वर जो सारे जियां दा दाता विधाता है, उसका जिहड़ा सच्चा नाम है वो गुरु पातशाह जी की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदा है, गुरु कृपा दे नाल। ते गुरु भी जो समर्थ है, जो पूरा है, पूरे गुरु दे ज्ञान दे राहीं असी सच्चे नाम दे नाल जुड़ सकते हैं और परमेश्वर दे नाल प्रेम पा के असी परमेश्वर दा

0: मान मोह बेकार तजिए आओ सत संगी जनों आपां रल के अपने अंदरों माण त्याग दईए, क्योंकि जिन्ना चिर माण अंदर है ना, माण मैं, उन्ना चिर प्यारे प्रति प्रेम नहीं बनना। प्रेम बनाउण वास्ते माण त्यागना बड़ा जरूरी है, मैं नूं त्यागना बड़ा जरूरी है, और मोह दा त्याग करना पैना। फिर पिछे मुड़ के नहीं देखना, मोह पिछे खिंचदा। मोह जिहड़ा ना, मोह ये बेड़ी है, ये पिछे नूं खिंचदी है। मोह दलदल है, ये अंदर नूं खिंचदी है, ये अग्गे नहीं वधन। पंकज मोह पग नहीं चले, हम देखा तै डूबी अले। डुब गए, नहीं अगे लंघ सके, अगे तोरी नहीं सके। हुण पिसे दे पैर विच बेड़ी पाई होवे, हुण उह जिहड़ी बेड़ी आ उह किन्ना कु जिन्नी कु लंबाई उहदी होएगी उन्ना ही तुर सकदा ना उह। उस तो अगे जदों पैर करेगा उहने खिच के पिछा मारना है, क्योंकि खिच तां पिछे पैणी है ना। इह बेड़ी है मोह दी, इहनूं भी छड्डणा पैणा है। इसलिए महाराज ने कहा सी पहला लैसन ध्यान ला के पढ़ लियो, क्योंकि पहला लैसन पढ़ना बड़ा जरूरी है। पहला लैसन की सी? पहला मरण कबूल, जीवन की छड आस, हो सबना की रेण का तौ
1: आओ
0: आओ हमारे पास। जीवन की आस छड़ना, मोह नू छड़ना, मोह ते अगना, पकड़ छड़नी मायावी पदार्थां दी। इसलिए मान मोह बेकार तजी है, ये जड़े बेकार ने बुरियाइया ने छड़ दईए, अर्प अर्पण कर दईए। तन धन ए मना, ये जड़ा तन है, धन है, मन है, ये समर्पित करके कहिए प्यारे जी ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, ते तन भी तेरा, मेरा तो है ही कुछ नहीं। इनू आपां अर्प अर्प मतलब समर्पित करके कहिए, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे। ये फिर खेड बननी है, अजे ते मैं मेरे च ही पए हुए हैं, ये मेरा है, ये मैं हाँ, बस इहदे विच ही जिंदगी का समा लंघ रहा है। असी दुनिया दे विच हर थां ते अपनी अपनी मोर लाई, पर असी धर्म अस्थाना नूं भी नहीं छड्डिया। असी धर्म अस्थाना ते भी अपनी अपनी मोर ला दित्ती, मैं हाँ, मेरा है, बस ये मैं मेरी ने तो नेड़े नहीं होण दिता सानू गुरु दे, गुरबाणी का रस बनन ही नहीं दिता। इस मैं मेरी ने गुरबाणी का रस अंदर बनन ही नहीं दिता। साहब जी कहिंदे जिहदे अंदर प्रिय प्रेम लगा, उन्हें अपनियां सहेलियां सत संगियां नूं भी आखिया आओ आपां मान बोहो बेकार तजिए छड़ दईए, आपां अर्प अर्पण करिए। तन धन इह मना, अपना तन मन धन समर्पित कर दईए समर्थ वाहिगुरु जी अगे, ताकि साडा जीवन

दुख दारू सुख रोग प्या जा सुखताम ना होय, तू करता करना मैं ना जाओ करना होय। बलहारी कुदरत वसया तेरा तन जाय लख्या रहो, जा तुम्हें जो जोत में जाता अकल कला पर पूरिया। तू सच्चा साहेब सिप सुआ लियो,

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਹਿਤਾ ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸੈਂ ਕੁੰਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੀ ਛਰਿਆ
तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सबद आवहें सबद आवहें तुझी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जीहां का दातारा हर दया बहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दात एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सिवहें तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जेना हर ते आया जी तेना टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन से बया जिन से बया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बयंत बेहंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करहें हर पूजा जी तप तापहें जपहें बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया
जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुग वाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया ओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े पाईले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबियले, मन एक ना चेतस मूड़ मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरना, जैन तू ना ही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवरकाज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भज केवल नाम, स्रंग जाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी क्रोहा दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दे मोहे बचाब हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवेरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिए, चुन चुन शत्र हमारे मारिए, आभात दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करियो रक्षा, राख लियो मोहे रखन हारे, साहिब सन सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता,
तुम हो पुरी चतर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सौ लोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पल मो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने, जब उदकर करा करतारा, प्रजा तरत दब देह अबारा, जब आकर्ख कर तो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको पीव ना पावत बिदा, ताको कृपाण अनुमानत, महामूड़ कछ भेद ना जानत, महादेव को कह सदा शिव, रंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूपानुपस रूपा, रंक पयो राभ कहीं पूपा, अंड जेर से तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहों फूल राजा हवै बैठा, कहों सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आजुग स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठबत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणगाता, जे आस तुझे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट न अह, रक्षा होए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरियो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई,
दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहें ओबारा, जिन नर नाम तेहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी।

बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तरह नहीं आने ओ। राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सवाए बहु भेद गहें हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुम भी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छड के गयो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा। सगल द्वार कौ छड के गयो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा। राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी बसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किछे है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया जैनो इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्ठा जिस दियां एह वड़ियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द थरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे। कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक तस कहोआ तित घर अन्न हद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म।

उत्तरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा।

0: मंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो एह वस्त तजी रह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कोई न जाने तुमरा अंत चेते ऊचा भगवन सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी

सी समुठी जमकाल मन का तो सहर नाम है हृदय रखो संभाल एक खर्च अखुट है गुरमुख निबहे नाल ए मन मूलों फुल्लिया जासी पत गवाए एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमति सच ते आए हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए गुर कै शब्द मन तन रपे हर स्यों रहे समाए सौ सौ मेरा रंगला रंग सहज सुपाए कमन रंग ता चढ़े जाम पिरक अंक सवाए चिरी में छुन्ने पी मेलन जो सतगुर सेवन अंतर नाम निध नाम है खान खर चुन नान खुटई हर गुण सहज रवन नाए जन में नाम रे नाए दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यों केल करन सजन मिले ना बिछड़े जे अन्दिन मिले रहन।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा। गुरु नानक

कनेर कोय न जाने तुमरा अंत चेते उचा भगवंत सगल समगरी तुम रैसो तरतारी तुम ते होए सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी।

सतगुर सेव परम पद पायो, अभिनाशी अभिगत ते आयो, तिस पेटे दरिद्र ना चंपै, कल सहार तास गुण जंपै, जंपो गुण विमल सुजन जन केरे, अमे नाम जाको फुरिया, इन सतगुर सेव परम पद पाया, नाम निरंजन उरतरिया, हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक, चाहक तत समत सरे, कव काल ठकुर हर दास तने, गुर राम दास सर अपर परे, छूटत परवा अमे अमरा पद, अमृत सरोवर सद परया, ते पीवै संत करे मन मजन, पुब जिन्हू सेवा करिया, तिन पो निवार अनपै पद दीना, शब्द मातर ते उदर तरे, कव काल ठकुर हरदा कव कव काल ठकुर हरदास तने, गुर रामदास सर अपार परे, सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत, आत्म रंग चलूल पया, जाग्या मन कवल सहज परकासिया, अबै निरंजन करे लहा, सतगुर दयाल हर नाम दिड़ाया, तिस पर साध वस पंच करे, कव कल ठकुर हर दास

गुर रामदास कल उच्चरे तैं हर प्रेम पदार्थ पायो। प्रेम भगत परवाह प्रीत पुबली न हुटे, सतगुर शब्द अथा अमें धारा रस गुटे। मत माता संतोख पिता सर सह समायो, अजूनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो। अवगत अगोचर अपर पार मन गुर शब्द बसायो। गुर रामदास कल उच्चरे तैं जगत उदाहरण पायो। जगत उदाहरण नवने दान भगत है भवतारण, अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण। सहज तरोवर फलेओ ज्ञान अमृत।

0: मुक्ते भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उच्चरे तै शब्द निशान बजायो गुर रामदास कल उच्चरे तै शब्द निशान बजायो
1: सेज सदा सहज छावन संतोख सराय चो सदा सील सना हो सो है गुर शब्द समाचरे ओ ना

जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पात शाह।

सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच तुदा के लाख करोड़ सच सब तान सच सब जोत सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची